0: आवाज विभिन्न को आवाज परिवर्तन को संवाद रेडियो दीदी बहिनी 95.2 MHz।
1: सीता ए सीता
2: हजुर
1: रेडियो खोल त खबर चौतारी आउने बेला भयो।
2: ल ल खोलिहाले।

0: विस्तृत जानकारीका लागि सरक मेमोरियल हस्पिटल नागढुङ्गा पोखरा फोन 061-552-493-552-494-582-778।
1: नौ नानी दाई, बन्न त आगो लागेछ, निभाउन जाउ न।

0: के तपाईँ सम्पूर्ण घरयासी सामानहरू एउटै छानामुनि किनमेल गर्न चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्, मीन भवन नयाँ बानेश्वरमा खुलेको छ अल इन वन मार्ट सुपर मार्केट। हामी कहाँ लत्ता कपडा, खाद्य सामग्री, खाना नास्ताका पसलहरू, बैंकिङ संस्थाहरू लगायत नुनदेखि सुनसम्मका सामानहरू एउटै छानामुनि उपलब्ध छ। अब घरयासी सामानहरू किनमेल गर्न धेरै पसलहरू चार्नु पर्दैन। सम्पूर्ण सामग्रीका लागि अल इन वन मार्ट सुपर मार्केट, मीन भवन नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ।
1: गंदकी कॉलेज अनाउंस रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर प्लस टू कंप्यूटर साइंस अलोंग विथ होटल मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज मैनेजमेंट ह्यूमैनिटीज एजुकेशन एंड लॉ आवर फीचर आउटस्टैंडिंग बोथ रिजल्ट साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल सोशल एंड एकेडमिक एनवायरनमेंट फॉर मोर डिटेल गंदकी कॉलेज मैथी 16 काठमांडू फोन 01499

नगर कार्यपालिका को कार्यालय पर्वत, कुहिने नकुहिने फोर घर नगर पालिका को कार्यालय फलेवास, कुहिने नागरिक बनौ सामाजिक जनहित का लागि फलेवास नगर कार्यपालिका।

जनहित का लागी नेपाल सरकार महिला बाल बालिका तथा दृष्टि नागरिक मंत्रालय को सहयोग रेडियो दीदी बहनी 95.2 मेगाहर्ट्ज को सहकार्यमा कुसुमा नगरपालिका पर्वत